0: रिसर्च कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जकूजी एंड विलियम्स पार्क वे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: लो जी, एक बार फिर अपने टेस्ट की गल कर लगे हैं, दिल कर रहे हैं ताजी।

यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 and 10 ब्रांटन। टेलीफोन 905-799-9400।

संतन रस भोग रहा, सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग, गुण गा भवनित राम के ए अवखद जोग, आए बसों का देश में।

पे रोग शीतल मन पया गुर पूरा हरा दिया सगला दुख गया राधन हार राखिया अपनी कर मया रहा बात पकड़े कब का अपनाया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया मिलावन मिला पंजो रोग मिटाया कब उपजा सुख साथ बटपता बजरज रूप हर की निदान गुरु गोविंद कृपा करी रखिया मेरा भाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय रहा विधि कदे ना हो भाई जन की

जोगिंद हमारे राम दास दुख लगा ना भाई सतगुरु पूरा पेटिया दिन बन बनाई राम नाम औखद दिया एका ने लाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याज मिटाई कहना लग कृपा पई प्रभु पई।

सुख साथ सहज आनंद पै पूर्ण पई से रहा भक्त जना की बेनती सुनी प्रभया रोग मिटाए जीवा जाता मन पड़ता।

0: हमारे पास आ जाएगा।
1: श्री ब्रह्मांड पुराणे शुक्र कवचम संपूर्णम अस्य श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ 2026 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165 ਤੇ 416-213-1165।
1: जी हाँ, एक आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, या अली मदद। और आपके लिए अभी हालांकि वो जो ओंटारियो में जंगली आग जिसको कहते हैं वो जारी है, तो उसकी वजह से धुआं जो है स्मग है उसकी वजह से, और सीनियर्स को खास करके अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को पानी पीना चाहिए खूब सारा, और अंदर घर के भी कितना देर रह सकते हो फिर भी कोशिश करिए अपने आप अपना ख्याल रखिए। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अभी आपके लिए गुरु पूर्णिमा आने वाली है अभी, तो पहले आपको बता दें कि आप अगर फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, बढ़िया क्वालिटी का टीवी, बढ़िया गैजेट किचन में लेके आना चाहते हो, लेटेस्ट एडवांस आपको टीवी चाहिए, आपको बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको बढ़िया प्राइस, बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलता है, और आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट मॉडल मौजूद है। एक लोकेशन, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, उनके स्पेशल देखें और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 9057990045। आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि अब आपके लिए मास्टर कुरियर डिपो लंदन में खुल चुके हैं, खुलेंगे बहुत जल्दी, ओपनिंग होगी। तो अगर आपका कलिजन का काम हो किसी तरह का भी, तो आप masterkollision.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। लंदन के आसपास के इलाके में आपको किसी किस्म का भी कलिजन का काम करवाना हो तो आप मास्टर कलिजन डिपो पे जाइएगा, आपको हर तरह की बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगी, बहुत बढ़िया प्राइस भी आपको मिलेगी, तो आप मास्टर कलिजन डिपो पे जाइएगा। और अब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है किचन वाटर वॉल्व में, तो आप निशिफेंड को कॉल करिएगा 5562612650954612600। घर लेने के बाद आपको मूविंग होना पड़ता है, तो मूविंग के लिए एच के मूवर्स बहुत बढ़िया, उनकी बहुत सारी टीम्स हैं कैनेडा भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं। तो अगर आपने मूव होना है तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लो 416-524-704 पर कॉल करके 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं।

लता जी का गाया हुआ बहुत ही प्यारा सा गीत है आपके लिए। तो अब और भी बहुत से बढ़िया बढ़िया गीत आपको सुनाएंगे, रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे बढ़िया बढ़िया गीत लेकर के आपके लिए, मनोरंजन बढ़िया सा लेकर के। तो अब आपके लिए आजकल समर है तो सड़क

इस तरह की चीज को जो है इग्नोर करें और सड़क पे रोडरेज ना करें, गुस्से में ना आए। और साथ में आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं सड़क पे एक्सीडेंट्स फेस कर रहे हैं। जैसे कि आप ने टर्न बना ली तो वो जो आगे वाला होता है वो अचानक खड़ा हो जाता है और आपको तो टर्न बनानी ही है क्योंकि दूसरी तरफ से ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको शक है कि जो आगे वाला आपके कार वाला वो थोड़ा फनी तरीके से पेश आ रहा है तो आप टर्न बनाए ही ना, लाइट की वेट कर ले, अगली बारी लाइट होगी तो फिर आप टर्न बनाना अपनी सेफ्टी के लिए। और फिर दूसरी बात ये है कि ऐसे लोगों को किसी से हम डरती नहीं कि जो एक्सीडेंट स्टेज करने की कोशिश करते हैं तो उनसे आपको अपने आप को बचाना है। बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी क्योंकि समर टाइम है तो सभी का मन होता है कि बाहर घूमने निकले, बस सर्दियों में तो अंदर ही बैठे रहते हैं कि चलो जरूरत नहीं है तो मत जाओ, अपने जो जो भी आपने लेना हो तो आप अपना ट्रिप प्लान करके जाते हो। तो ये अब आपको अगर आपने फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेना है, बढ़िया टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर लेना है, बढ़िया बारबेक्यू चाहिए, इतना थोड़ी सी सेटअप करवानी है तो ये सारा कुछ आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडल एंड्रॉइड को रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। उनके स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल करो, 905-799-0045। और अब आपके लिए स्मोसा शू फैक्ट्री LBM पर मौजूद है, उनके वहाँ बहुत सारा सामान बिकता है। जहाँ पे सामान बहुत बिकता हो तो आपको खाना जो होता है फ्रेश मिलता है, चाहे मिठाइयाँ हो चाहे खाना हो, बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। तो आपके लिए अब बहुत बढ़िया से गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें कि अगर आपने ट्रैक्टर बेयर करवानी है तो 1715 रोड पे मिस्सी सदा में मौजूद है बेस्ट ट्रैक्टर बेयर एंड टायर सेंटर। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-625-0055, 9562500055 पर कॉल कर सकते हो। आपके लिए खुशी की खबर है कि अब मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में खुलने जा रहा है, तो बड़ी ग्रैंड ओपनिंग होगी तो आप जरूर जाइएगा और अपनी कार का जो भी आपको कोई काम करवाना हो तो कलीजन का काम तो आप मास्टर कलीजन की फूट पर जा सकते हो लंदन में आसपास के इलाके में भी। अब आपको अगर किसी किस्म की भी आपको मिठाइयाँ लेनी है, सब खाना लेना है बढ़िया, तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट ब्रिटानिया ग्रेड टू में मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-844-1780 पर कॉल करो, 9085-814-1730 पे न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट को कॉल कर सकते हो। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपके लिए, उनकी बहुत सारी टीम है, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाएंगे, कनाडा भर में मूव करने में मदद करते हैं। तो आप अपना ट्रक बुक करने के लिए, मूविंग के लिए 416-524-7004 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको ये एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं।

0: जी हाँ, एक बार फिर से
1: सुर में गाना सीखिए और अनुसार के साथ ये एम्पावर्ड पर्सनल म्यूजिक फीचर
0: प्रोग्राम घर संसार। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो अब आपके लिए और भी बहुत प्यारे प्यारे से गीत सुनाते रहेंगे आपको। रात को भी 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो अब अगर आपने फ्रिज स्टोव लेना है, वाशर ड्रायर लेना है, फिर आपको ऑर्डर फर्नीचर चाहिए, बाकी क्यों चाहिए, टीवी बढ़िया से चाहिए, किसी को गिफ्ट लेके देना है, शादियाँ आजकल बहुत हो रही हैं, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर काम पर जाकर उनकी स्पेशल देखिए। एक लोकेशन उनकी आपके लिए इंटर मॉडल एंड मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 टोरंटो आसपास के इलाके में घर खरीदना बेचना चाहते हो, कुछ वासिंग बैंस को कॉल करो 416-6773-4167-1313 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आपके लिए एक और बहुत ही नटखट सा गाना मैंने चुना है। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: लता जी का उषा मंगेशकर का गाया हुआ जो गीत था तो आजाद फिल्म आई थी उसी का, ये दिलीप कुमार उसमें थे तो उनकी तो फिल्म कमाल की थी जितनी भी है। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, आप और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आपको जिन्होंने ये गाने सुने थे पसंद किए थे हमने उनको उनकी पसंद प्ले कर दी है। आपको अगर कोई गाना पसंद है तो आप घर संसार रेडियो gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। जो आपकी कोई पिकनिक है, अभी समर में बहुत सारी पिकनिक्स हो रही हैं तो जैसे हैमिल्टन मंदिर वालों की भी पिकनिक है मेरे ख्याल कल है, तो आप जरूर उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें जा सकते हैं तो हैमिल्टन मंदिर वालों की पिकनिक है। अब आपके लिए अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं कनाडा भर में मूव होने के लिए। अब और बहुत सारी उनकी टीम्स हैं आपके सामान को फादर से पहुंचाते हैं और अपना ट्रक बुक करने के लिए मूविंग के लिए 416-524-4 पर कॉल कीजिए 416-524-6704 पे कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए आपको एक और बहुत ही आरजू फिल्म का ये गीत सुनाती हूँ। आरजू फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म थी 1965, उसमें महमूद थे। आपको मौका मिले तो जरूर देखना।
1: फूलों की रानी,
0: मौसम हर तरफ फूल खिले।

जी हाँ, उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो अब आजकल समर है, बच्चों को छुट्टियां हैं, तो बच्चे कई बार सड़क पे खेल रहे होते हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा जब भी आप गाड़ी चलाइएगा। और हाईवे पे जब गाड़ी चलाते हो तो जो आसपास में देखिएगा ट्रक वालों का, उनसे डिस्टेंस रखिएगा। और फिर आपको अगर कोई जैसे किसी भी मौके भी आपको गाड़ी जो है ना अपना ध्यान से चलाइएगा। तो अब मौसम थोड़ा गर्मी है, तो जो आप अपने आप को खूब पानी पी पीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। तो अब आपके लिए एक और गाना बहुत ही प्यारा सा सुना है, पर पहले आपको बता दूँ, अगर आपने लड्डू जलेबी या समोसे बढ़िया मिठाइयाँ लेनी है तो आप समोसा स्वीट फैक्ट्री LGM पे जाइएगा। उनको ऑर्डर बुक करने के लिए 416-213-1100 पर कॉल कीजिए, 416-213-1165। अगर आपकी कोई पिकनिक होने वाली है, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, खाना ऑर्डर करना है, तो समोसा स्वीट फैक्ट्री वालों से करिएगा, आपको एकदम फ्रेश खाना, बढ़िया खाना मिलेगा। अब आपके लिए ये गीत पेश है, लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, और मैं हूँ आपकी होस्ट नीरा।

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो मुझे पक्का यकीन है आप जैसे मुझे ये गाने सुनकर के बहुत ही बढ़िया अच्छा महसूस हो रहा है। आप भी जरूर बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे ये गाने सुनकर के। तो अब आपके लिए पंजाबी का गीत सुनाते हैं उस पूजा का। जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। गर्मी है तो पानी खूब पीजिएगा, अपने आप आसपास में गाड़ी चलाइएगा तो ध्यान से चलाइएगा, बच्चों को छुट्टियां हैं तो सड़क पे आप ध्यान से जाइएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने मिठाइयाँ लेनी है, लड्डू ले दिया तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पर आप जाइएगा। आपको फ्रिज तो वाशर ड्रायर चाहिए तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाइए। तो आपने मूव होना है तो इसके मूवर्स को कॉल कीजिए 416-524-7004 पर कॉल कर सकते हैं। मास्टर कलीजन की प्रूव आपके लिए खुशी की खबर है। आप लंदन में खुलने वाले हैं तो आपको सेवाएं देंगे। कलीजन की हर तरह की सेवाएं आपको लेनी हो तो मास्टर कलीजन की प्रूव जाइएगा। अब मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पारे सुहागा कला है वंडरफुल डे। कल रात को भी आपकी सेवा में हाजिर, आज रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया गीत लेके आपका मनोरंजन करने के लिए, आपके साथ समय बताने के लिए। तो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पारे सुहागा कला है वंडरफुल वीकेंड। जो भी है आप जरूर वॉक के लिए जरूर जाइएगा। तो और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर कीजिए, चाहे घर पे बैठे चेयर पे ही क्यों ना कर लें, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ अपनी एक्सरसाइज का जरूर ध्यान रखें। अभी समर में तो ज़्यादा ना करें, थोड़ा बहुत जरूर हिले जुले अपने शरीर को फिट रखें, अपने आप को फिट रखने के लिए। तो इसीलिए आप जरूर कोई ना कोई प्रोग्राम अपने लिए बनाएं, एक्सरसाइज का प्लानिंग करें। तो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: ஐ ஆபஸ் வாடக்க ரசு சார்பி கான் ஜி ஆத்மா பிரமாத்மா என்ன சொன்ன வாட் பாதி ஜெனிக்கு சார்
1: आपको अपनी आंखें चेक करवानी है आई एग्जाम आई ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंसेज सन ग्लासेस सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जकोसी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450 स्काइप देती पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस

0: Up in that days, a brother dumps the Musa and Sweet Factory at all leading grocery stores.
1: नहीं तो राम नाम विचार नान रूप नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिरजीव है माँ उदार कवि सती है अगन माही होमत प्राण कनक अश्व है वूमदान न्योली कर्म करे बहुआसन जैन मार्ग संयम साधन निमुख निमुख कर से कटावे कौ भी होमे मेल न जावे हर के नाम सम सर कछ नाही नान गुरमुख नाम जपत जत पाए मन कामना तीरथ दे छुटे गर्व भगवान ना मनते उठे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न कमते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते तो न क्या करे जल तो है बहु दे अनेक शुद्ध का हो काची भीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उदरे पत बहुमोच बहुत स्यान जमता बहु व्याप है अनेक जतन करते सुना भाप है देख अनेक अगर नहीं बुझे कोट पाप कर गहनी से जाए छूट स्नायु प्यान मोय व्याप है माया जान अवर करतू सगरी जमदान है गोविंद भजन बन तिल नहीं मान है हर का नाम जब दुख जाए नान बोले सह शुभाय चार पदार्थ जी को मांगे साजना की सेवा लागे जी को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सजावे जे को अपनी शोभा लूरे सात संग ही हो मैं छोरे जे को जन्म मरण दे डरे साजना की सदनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानका के बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान है सात संग जाता मिटे बिमान आप उसको जो जाने नीचा सो गनिये सबते ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेक है सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख धन सम दृष्टिता नानक पाप पुण्य नहीं ले पा निर्धन को धन तेरो नाव न खावे को नाव तेरा खाओ निमाने को प्रभु तेरो मान सगल कटा को देवो दान कर्म करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपने गत में जानू आपे आपन संग आप प्रभु दाते तुमरी उस्ता तुम ते होए नानक अवर ना जान सोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साथ संग दुर्मत मन हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल वाणी में अमृत वाणी हर को जस सुन रसन खानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कट वसे हर नाम श्लोक निर्गुणियार ज्ञानिया सो प्रभु सदा समान जिनकी आतिश चीत रख नानक निर्भीनार अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सुहास सिंगारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सोध बिल पया ऊपर साख सैन मुख पिया बैठ को गए इंद्र गुण गुण कठिन बूझे बख्श देव तो

नाशन गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकम्।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है। तो अब आपके लिए ये जो जुलाई का महीना है ये भी आधे से ज्यादा निकल गया, तो आपने जो भी अपनी जिंदगी में 7 महीने साल के निकल गया, मतलब कि आपने जो भी पहले इस साल में कुछ भी अचीवमेंट करने का सोचा था, आप उसमें कहाँ तक पहुंचे हो, आप जरा चेक कर लीजिए अपना कैलेंडर, देख लेना रात को सोते हुए, सवेरे जागते हुए अपना याद करो, शाम को सोते हुए फिर याद करो कि मैंने क्या करना है, अपने टाइम को कैसे यूज करना है, बढ़िया तरीके से यूज करना है, ताकि आपने इस साल में कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर हो। जैसे कि मैंने अभी फैसला किया कि मैं ना म्यूजिक सीखूंगी, पहले मैंने एक और कोर्स भी किया है इस साल, छोटा सा, छोटे छोटे कोर्सेज किए हैं, लेकिन उनका जो कई बार छोटी छोटी चीजें सीखने से भी आपकी जिंदगी आपको बेहतर लगने लगती है, आपको लगता है एक और आपके दिमाग में एक और चीज आप सीख गए हो, तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें सीखो। अब मैं म्यूजिक सीखना शुरू करने वाली हूँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की क्लासेस शुरू करने वाली हूँ, तो बिजी बहुत हूँ, समझ में नहीं आता, बस एक दिन मैंने चुन लिया है, वैसे कौन से दिन मैंने क्लास लगानी है, एक हफ्ते में एक दिन, 4 क्लासेस महीने की, और फिर मैंने ना अगर मैंने म्यूजिक की क्लासेस लेनी है तो फिर मैंने जैसे यूट्यूब सारे लोगों ने सारे गामा पा और वो सभी कितने तरह के राग हैं जब वो सारी जानकारी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पहले से सीख रही हूँ, लेसन शुरू होने से पहले, जैसे कि मैंने जैसे सारे गामा पा दा नीसा, तो मैंने ये देख लिया कि सा और पा और मा वो आगे फ्रंट वाले जो लिप्स होते हैं वहां पे से आवाज निकलती है, तो रे धा नी ये जो तीनों स्वर हैं, 7 स्वर हैं, तो फिर ये जो तीनों हैं वो आपके तालु के ऊपर लगते हैं, तो फिर गा ये जो है तो ये आपका गले से निकलता है आवाज, तो बाकी सारे जो राग हैं अलग अलग राग हैं उनके बारे में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पहले से थोड़ा अपने आप को मेंटली जैसे प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आजकल तो अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, और तो उसको पहले यूट्यूब में ट्रोल करके तो उसके बारे में जो शुरुआत के उसके स्टेप्स हैं वो आप थोड़े थोड़े सीख लें, तो फिर आपको सिखाने वाले को भी मजा आएगा कि आगे जो स्टूडेंट है वो मेहनत करने वाला है और तैयारी करके बैठा है कि जो भी उसने सीखना है, आपको जो भी सीखना है तो इस तरह करिएगा। जैसे कि मैंने पहले कोई और कोर्स लिया था तो उसकी भी मैंने यूट्यूब में देखती थी कि लोग और दूसरे और कहाँ कहाँ पे वो कोर्स मिल रहे हैं और वो क्या सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उसकी भी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई थी, तो वो मैंने देख ली, उनको देख देख के अभी रोज मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, उसका भी जो कोर्स पूरा कर लिया मैंने उसको दोबारा से सारा प्रैक्टिस करती रहती हूँ रोज ना, तो उसमें मैंने ये किया कि जो पुरानी नॉवल है जैसे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसकी जो फेमस कोटेशन थी वो मैंने रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाल दी, जैसे जो मैंने सीखा उसको इस्तेमाल करते हुए। तो आइए आप सभी श्रोताओं का घर संसार में एक बार फिर से बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बात कर रही थी कि अगर आपको कोई अपना टाइम देख लीजिए आपने कैसे कैसे बताना है, तो इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरे भी बिल्कुल नहीं करेंगे आपके टाइम की वैल्यू, इसलिए आप जरूर अपने टाइम की वैल्यू कीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, बढ़िया टीवी लेना है, किचन की गैजेट्स नई वाली चाहिए, या फिर आपको किसी किस्म का भी आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बारबेक्यूज लेने हैं, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है, और उनके स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से साथ। जी हाँ, तो अगर आप अपने कोई अपने आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि मास्टर प्लान डिपू अब लंदन में खुलने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया आपको सर्विस देंगे, अगर आपने
किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है, उनका बहुत सालों का तजुर्बा है, बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। आप mastercollisiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी लीजिए। गोर रोड पे उनकी लोकेशन है लंदन में, मास्टर कोलिजन डिपो। अब अगर आपने मूव होना है तो एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। उनकी बहुत सारी टीम है और आपके सामान को बड़े हिफाजत से ले जाते हैं। और जानकारी के लिए आप एचके मूवर्स को 416-524-404 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी तरह की भी ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए मौजूद है 1715 सिसमत रोड मिसिसागा में। तो वहां पे आपको आप उनको और जानकारी के लिए कॉल कर सकते हो 905-625-0055। आपने वेज नॉन वेज किसी तरह का भी खाना ऑर्डर करना है, आपने लाइव कुकिंग करवानी है तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए न्यूली रेनोवेटेड ब्रिटानिया क्रेडिट भी पे मौजूद है। और जानकारी के लिए

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। उम्मीद रखती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। ये महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ, सुनील दत्त माला सिन्हा के ऊपर फिल्माया गया था ये गीत। सो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। कभी कभी जब आप एक रिश्ते में बहुत लंबे टाइम तक होते हैं तो फिर ऐसा ही सोचना चाहिए जैसे

है कोई से आपका स्वागत है घर संसार में। जी हाँ, तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, टीवी बढ़िया लेना है, बैक डोर, आउटडोर फर्नीचर चाहिए या फिर किचन गैजेट्स चाहिए लेटेस्ट, तो ये सारा सामान आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के। टॉप

इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरे लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045 9045।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ G26 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1115 ਤੇ 116-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से सर में। तो अब अगर किसी वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ना सिर्फ हिंड को कॉल कीजिए 519-546-1260 पे। आपने सिर्फ हिंड को कॉल कीजिए। अब आपने मूव होना है तो आपके लिए मूवर्स, HK मूवर्स आपके लिए बहुत बढ़िया मूविंग सर्विसेज देते हैं कनाडा भर में। और आप उनको कॉल कर लीजिए 519-416-524-704 416-524-6704 पे। आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो बस एक बार आप उनको कॉल कर लीजिए, अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-6704 HK मूवर्स। तो अब आपको गीत एक और ये अभी आपको सुनाती हूँ, राहत फतेह अली खान का। ये एक बहुत ही खूबसूरत उनकी जो एक कंपोजिशन है।

0: फिर से आपका स्वागत है घर संसार में।
1: आए आप आए गरीब खाने पर, आप आए गरीब खाने पर, सच तो ये है मुझे यकीन नहीं।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। और अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना है और बढ़िया किचन के गैजेट्स आपको चाहिए तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, अपने ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045 9057990045 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। और अगर आप लंदन में रहते हो तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके शहर में मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए मौजूद है। तो किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो गोर रोड पे मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर अब उनकी बारी लंदन में और जानकारी ले सकते हो। तो अब आपके लिए किसी किस्म के भी उनको आप कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है। तो आप और जानकारी के लिए उनके वेबसाइट पे जाइए और पता कर सकते हो और जानकारियां ले सकते हो कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलेंगी उनके पास। तो आप उनको उनके बारे में जान लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने किसी किस्म की भी मूविंग आपको करनी है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए। HK मूवर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया सर्विसेज देते हैं। तो 416-4607-04। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि आजकल बहुत सारे लोग जो एक्सीडेंट स्टेज करते हैं आपके आगे आकर के फास्ट करके आप लेफ्ट टर्न बनाते हो तो बस लेफ्ट टर्न बना के रुक जाते। अगर आपको कोई उनका पैटर्न थोड़ा सा हो जाता है कि जगह जगह पे बहुत अचानक अगर आपको ऐसा लगे तो उस कार से आप पीछे ही रहें, क्योंकि अपनी सेफ्टी आपकी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो किसी का खड़े उनका ज्यादा उनको वाला इस चीज करके तो भी नहीं होती चोट किसी भी। तो आइए आपको एक बीरबल अकबर की एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। बीरबल की विनोद प्रियता और बुद्धि चतुर्या ने न केवल अकबर बल्कि मुल्क साम्राज्य की अधिकांश जनता का मन मोह लिया था। लोकप्रिय तो बीरबल इतने थे कि अकबर के बाद उन्हीं की गणना होती थी। वे उच्च कोटि के प्रशासक और तलवार के धनी थे, पर शायद जिस गुण के कारण वे अकबर को परम प्रिय थे वह गुण था उनका उच्च कोटि का विनोदी होना। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बीरबल एक कुशल कवि भी थे। वे ब्रह्मा उपनाम से लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह आज भी भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। वैसे तो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु उनके असली नाम महेश दास था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जमुना के तट पर बसे त्रिविक्रमपुर अब तिकवापुर के नाम से प्रसिद्ध है, एक नृत्य ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन उनकी प्रतिभा के बल पर उन्होंने अकबर के दरबार के नवरत्नों में स्थान प्राप्त किया था। उनकी इस अद्भुत सफलता के कारण अनेक दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। बीरबल सेना नायक के रूप में अफगानिस्तान की लड़ाई में मारे गए थे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु ईर्ष्यालु विरोधियों का परिणाम थी। बीरबल की मृत्यु के समाचार से अकबर को कितना गहरा घात पहुंचा था, इसका परिणाम है उनके मुख से कविता के रूप में निकली ये पंक्तियां। दीन जान सब दीन, एक दुरायो दुसह दुख, सो हम सब को दीन। कुछ नहीं राख्यो बीरबल, अकबर के लिए बीरबल सच्चे सखा सच्चे संगी थे। अकबर के नए धर्मदीन ए इलाही के मुख्य 17 अनुयायियों में यदि कोई हिंदू था तो वो थे अकेले बीरबल। तो ये थी बीरबल के बारे में आपके लिए एक जानकारी। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगी ये बीरबल के बारे में जानकारी, क्योंकि उनकी कहानियां बहुत लोग जानते हैं लेकिन ये जो एक तथ्य सच था उनके बारे में ये मैंने

0: दुनिया से दूर चले होके मजबूर हम याद रखना।
1: आप सुन रहे हैं घर संसार रेडियो, तो उम्मीद रखती हूँ कि आराम पसंद रहा होगा। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। हमारे प्रोग्राम का समय तकरीबन

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

अब कह कर होगे ऐसी मीना पकर फांक्यो और काट्या रांद कियो बहुबानी खंड खंड कर पूजन कीना तौ न बिसर्यो पानी अपन बापा नहीं किसी का

भगत नहीं संतप कहरव दास भगत एक बाडे अब एह कास्यों कहिया जा कारण हम तुम आराधे।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kala to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे हो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

भी तरह की लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस या फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्लान हरजिंदर गिल होर नाल संपर्क करो 647-400-8832। इस अलावा विजिटर टू कैनेडा आउट ऑफ प्रोविंस कवरेज बाय करना चाहते हो या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस दे बेस्ट रेट्स, बेस्ट प्लान, बेस्ट ऑप्शन बारे या फिर 40-45% का डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट करो 647-400-8862। बारे जानने के लिए 647-400-8862। हरजिंदर गिल।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974000188 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: दोस्तों स्वागत है तुहाडा रेडियो नजरिया दे विच। ते समा इस वेले 1:30 हो चुके है जी, ते 20 मिनट दा समा हो रहा जी। 1:50 ते असी विनर अनाउंस करने आ। जिन्ना जिन्ना फैमलियां ने टिकटां लै लिया वारिस ब्रदर दे शो दियां, पंजाबी विरसे दे शो दियां, उन्हां वास्ते साडा एक चल रहा जी लक्की विनर। 3 असी लक्की विनर चूज़ करने आ कि जेड़े उन्हां नाल बैठ सकते, गल्लां बातां कर सकते, ते अपनी फोटोस विद फैमिली तुसीं उन्हां नाल फोटो भी खिंचवा सकते। उन्हां तुहानूं मिलण दा मौका मिलेगा। पंजाबी विरसा 2026 July 25 सैचरडे नूं होण जा रहा जी। तो जिन्हां जिन्हां फैमलियां ने टिकटां लैणियां, तुसीं सिर्फ एक मैसेज करना हरजिंदर वीर दे नंबर दे उत्ते 647-468-62-647-400-6862 दे उत्ते तुसीं सिंपल एक मैसेज करना। तो हो सकदा तुसीं ओह लक्की फैमिली दे विचों होवो कि जिन्हां नूं वारिस ब्रदर नूं मिलण दा मौका मिले, तो तुसीं उन्हां नाल फोटो खिचवा सकते हो, तो गल्लां बातां कर सकते हो। तो सिर्फ 20 मिनट रह गए आ जी, तुसीं कर लो। तो जे तुसीं बल्क दे विच वी टिकटां बाय करनियां, 3-4 फैमलियां ने जां कोई 11 दोस्तां दा ग्रुप आ, जे तुसीं 15-20 टिकटां बाय करनियां, तो उहदे विच तुहाडी डेफिनेटली सेविंग हो सकदी है जी। उहदे वास्ते तुसीं मैनू कॉल कर लो 6477063800। असीं जरूर कोई ना कोई तुहाडे वास्ते तुहानूं वधिया कोई ना कोई करके देवांगे। तो तुसीं हरजिंदर गिल साहब नूं कॉल कर सकते हो 6474006862। जे तुसीं 2-4 टिकटां खरीदियां, फिर तुसीं ऑनलाइन भी टिकटां बाय कर सकते हो ticketmaster.ca ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10-15-20 ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 6474006862, ਜਾਂ ਸੋਢੀ ਨਾਗਰਾ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-303-4444 416-303-4444 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਕੀ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ।

0: एग्जामिनेशन है ही नहीं, टेस्ट है ही नहीं, आसान सी असाइनमेंट्स है। अंकल आंटी लाइक पूरा टाइम फोन पे। अब कल तो अंकल कहते हैं कि मेरे को तो फोन यूज करना आ गया, क्योंकि हमारे ऑफिस आ जाते हैं, थोड़ा सा लॉगिन कैसे करना है कैसे करना सीख लेते हैं, तो उनको फोन यूज करना भी आ गया अच्छी तरह। अब तो ये आसान से कोर्सेज ही है, अगर आप जिद करेंगे हमें ये वाला कोर्स है पहले हाथ खड़े करेंगे, हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें अपने रेपुटेशन देखनी है, हमने आपकी तरह से नहीं चलना। आसान से कोर्सेज में हम डील करते हैं, इतने कोर्सेज कर चुके हैं, जो थोड़े से रह गए हैं
1: इनकम घट आनकम 40,000 फर्क की पेगा जी।
0: जितनी इनकम कम है यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, जितनी आपकी इनकम कम है लेस लेस लेस, लोग शर्माते फोन करते हैं सर हमारी इनकम जीरो है, क्यों शर्मा रहे हो? आपके लिए बनाए प्रोग्राम ये, जिनकी इनकम कम है $70,000 से उन्हीं को फायदा है, और जिनका फैमिली साइज ज्यादा है, सिंगल बंदे को फायदा नहीं है, सिर्फ लोन आता है, ग्रांट से फीस कवर होती है, नो फायदा। मैरिड है बहुत अच्छा फायदा, फैमिली ऑफ टू को अप टू 45,000 की फंडिंग आती है, 25,000 उसमें से ग्रांट है। फैमिली ऑफ फाइव को
1: अच्छा, हाँ जी,
0: अगर तीन बच्चे हैं आपके तो आपको लाइक अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं बच्चे आपके, तो फैमिली ऑफ फाइव को 100,000 की फंडिंग आती है, 50,000 उसमें से आज की डेट में ग्रांट से।
1: फीस कितनी है जी? की तुहानू पहला जाता कोई कमीशन वगैरह भी है?
0: लास्ट हफ्ते 32 बंदों की फंडिंग उनके खाते में ठा करके गिरी है। उसके बाद हमारे ऑफिस से कॉल जाता है, छोटी सी चीज है हमारी 199, उसके बाद हमारे ऑफिस से कॉल जाता है, छोटी सी चीज है हमारी 199 या $499 डिपेंडिंग ऑन कोर्स, नॉट डिपेंडिंग ऑन फंडिंग। हमारी गुल्लक पे आपकी बातों पे नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं, कोई चलाकी नहीं है, कोई
1: जी मैं सही समझ रहे हैं नागपाल जी, तुम ये कह रहे हो, मैं दोबारा दस दा, इनकम जेडी फैमिली दी 70,000 तो घट आ, इंग्लिश आउंदी आ, ओ पीआर जा सिटीजन ने, नो मैटर सिंगल मदर्स ने, नो मैटर पेंशन ते ने, केड़ी एज आ, ओवर चलाउंदे ने, ट्रक चलाउंदे ने, मैटरनिटी लीव ते ने, नो मैटर, बस इनकम घट आ, ते ओ हर एक बंदा ये कोर्सेज अप्लाई कर सकदा। कोर्सेज सौखे ने, ऑनलाइन घर बैठे पास हो जाते हैं, असाइनमेंटा ने, अटेंडेंस आ, कोई टेस्ट नहीं, इदा के कोर्स भी अवेलेबल ने, स्किल वाले कोर्स भी अवेलेबल ने, उन्हां दे खातियां दे विच पैसे आउणगे, जदों पैसे आ गए, जदों उन्हां दा ये ग्रांट अप्रूव होगी, खाते दे विच $1,000 डिग गए, इदू बाद च तुहानूं $199 दे देने आ जां $499 दे देने आ, सही है जी? ये
0: बिल्कुल जी ए टू जेड आपने अच्छा तरह पंजाबी में समझ,
1: ते ग्रांट बंद हो रही है अगले हफ्ते,
0: बिल्कुल जी,
1: नंबर बोल दो राइट नाउ जी,
0: बिल्कुल अभी रोल हम पुश नहीं कर रहे, बट यही भी की पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी होती है हम एक्सटेंड कर देते हैं गवर्नमेंट की, आज गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है, मिस ना करें, आपके आस पड़ोस के सब बंदे ले चुके हैं, बहुत ही कम लोग रह गए हैं।
1: नंबर बोल दो जी,
0: नंबर है जी 4372461735, हुणे कॉल करे तो एस्टिमेट लो 4372461735। प्रॉपर ऑफिस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, हरंतारी डेयरी पे, 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, 7 बंदे काम कर रहे हैं आपके लिए, कोई कैच नहीं है, कोई कुंडी नहीं है, कॉल करें ऑफिस आए
1: दोस्तों राइट नाउ कॉल, क्योंकि ये ग्रांट है ना जी बंद हो रही है। जे तुहाडे मन दे विच मैं सारे सवाल किए ने, जे तुहाडे मन च कोई होर क्वेश्चन आ, तुसी बिना देरी किते एक नंबर डायल करना गा, ई नंबर डायल करके तुहानू इन्हां ने ऑनलाइन ही दस देना, तुसी अप्लाई कर सकदे हो, तुसी किन्नी ग्रांट किन्ने लोन लई एलिजिबल हो, ते तुहानू का इस तों बाद जे इन्हां ने कहता भी हाँ जी तुसी एलिजिबल हो ते इन्ने पैसे तुहानू आ सकदे आ, तुसी जाके अप्लाई कर दो, जदों तुहाडा लोन अप्रूव हो गया, ग्रांट अप्रूव होगी, इदू बाद च इन्हां नू 199 जां 499 दे देने, बहुत फेयर तरीके नाल नागपाल जी कम कर रहे ने, एक जरिया ने सिर्फ अपनी सर्विस चार्ज लै रहे ने। राइट नाउ कॉल करो ते जिवें कहिंदे आ खाते च पैसे होंदे किहनूं नहीं चंगे लगदे, 4372461735, 4372461735, 4372461735, 4372461375, 4372461375, 4372461375 ते गलबात की जा सकदी। बहुत शुक्रिया भाई जी, धन्यवाद, थैंक यू जी। दोस्तों रंगले सरदार दे लई असी नंबर अनाउंस किया सी, तुहानू दस दईए जिहड़ियां पंज फैमिलीज ने यह क्वालीफाई किया गा, जिन्हां नू कल्ली एक टिकट नहीं, उन्हां दी पूरी फैमिली, नो मैटर दो जने दी फैमिली है, तीन दी फैमिली है, चार दी फैमिली है, पंज दी फैमिली है। सो पंज ਪੰਜ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਰੰਗਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਵੇਤਾ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਕਮਲ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ੋਅ ਰੰਗਲੇ ਸਰਦਾਰ, 4 ਜਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਗਾਇਕ, ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਟਿੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 50-60 ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸ਼ੋਅ ਪੂਰਾ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-625-7396 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 647-625-7396, 6476257396 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੇਲ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਸੁੱਖ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੰਘਿਆ ਹੋ,
2: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲੋ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਵਰਸਰੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੇਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 6885 ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ, 6685 ਟੋਮਕਨ ਟੋਮਕਨ ਟੋਮਕਨ ਰੋਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁਮਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਾਈ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਸਖਤ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਟੇਬਲ ਪਲੱਸ 6 ਚੇਅਰ, ਟੇਬਲ ਪਲੱਸ 6 ਚੇਅਰ, ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਕਲਰ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਪਲੱਸ 6 ਚੇਅਰ, ਜਿਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ 1299 ਸੀ, 399 ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਵੁੱਡ ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ 6 ਚੇਅਰਾਂ, ਟੇਬਲ ਤੇ 6 ਚੇਅਰਾਂ, ਟੇਬਲ ਤੇ 6 ਚੇਅਰਾਂ, 399 ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਨਵਰਸਰੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, 6885 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6685 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ, ਡੈਰੀ ਟੋਮਕਨ, ਡੈਰੀ ਟੋਮਕਨ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇ 410 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6885 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ, 6685 ਟੋਮਗਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਐਨਵਰਸਰੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੇਲ ਸੇਲ ਸੇਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ।

0: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
1: हर एक जज्बात को दुआ नहीं मिलती, हर एक आरजू को जुबान नहीं मिलती। मुस्कान सजाए रखो तो दुनिया है साथ, क्योंकि आजकल हालात ये हैं कि आंसू तक को आंखों में पनाह नहीं मिलती। नमस्कार, आदाब सामीन। बहुत से जज्बातों, एहसासों को शब्दों में छिपा आपके रूबरू हूँ मैं प्रीत, आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस शो को सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: साड़ी वक्री पहचान,
2: साड़ा वक्रा है नाम, साड़ी कर नहीं सकता कोई रीज।
1: कल्चर ऑफ पंजाब।
2: बेहतरीन पंजाबी एंटरटेनमेंट की मूव वोल दी तस्वीर। एशियन कम्युनिटी का मनपसंद रेडियो शो कल्चर ऑफ पंजाब।
1: तेजी नाल वाज रहे रेडियो शो जिसको

ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ। कल्चर ऑफ पंजाब आपको एंटरटेन भी करता है और आपको बिजनेस भी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे तो इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा बन जाइए। देव तातला को 416-677-0609 दैट्स 416-677-0609 पर कॉल करें और स्पेशल प्रमोशंस का फायदा उठाइए। भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले शोज में आपका बिजनेस भी शामिल हो। कल्चर ऑफ पंजाब बाय देव तातला।

से मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उसकी आंखों के नशे में हम जब से डूबे, लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पे आंखों से फिसल जाते हैं। प्यार में एक ही मौसम है बहारों का, पर कभी कभार यूं ही ख्याल आता है कि लोग मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं।

आप सुन रहे हैं कल्चर ऑफ पंजाब। एक्साइटिंग एडवर्टाइजिंग पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं 416-677-0609, 416-677-0609।

कई बार सदियां बीत जाती हैं उनको मिले उनको देखे हुए और मन यूं ही उदास खुद से पूछता है सोचता है कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे रुक रुक कर उसे, वो अदब की किताब जैसा था, सारी आंखें थी आईने उसके, वो हकीकत था या किताब जैसा था। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर देर का फसाना है, अब तो उसके और मेरे मिलाप के बीच सदियों भरा जमाना है। दिल बार बार खुद से पूछता है कि ना जाने इन दिनों वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था सदियों पहले उसे।

0: राम जी, मेरा बिजनेस नहीं है चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव ताकरे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

जिन राहों से आप अक्सर गुजरते हैं वो रास्ते भी आपके इतने आदि हो जाते हैं कि अगर आप कुछ दिन वहाँ नहीं जाते तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर हैरान परेशान हुए पूछते हैं औरों से कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। समंदर पूछता है कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। वही दोनों जो भीगी रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक, कभी हंसते कभी कुछ गुनगुनाते या कभी चुपचाप बैठे दूर उफाक की गूंज में रोपोश होने वाले सूरज को देखते, आंसू बहाते और लौट जाते। समंदर पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते, पर समंदर बेखबर अनजान है एक सच्चाई से, और वो क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ट्रैक के बाद। व्हिच यू विल लिसन इन योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब ब्रॉट टू यू बाय देवदत्ता।

0: ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरे रब जी, मेरा बिजनेस नहीं चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
2: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव तात्रे नू कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

0: 32, 55, 80, 98।
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने,
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते।
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी एड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

Well, इसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यहीं खत्म करने की इजाजत दें। बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609. With that, I sign off. Shall see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.

0: करते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap।
2: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto.